तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाउ। जाप तप संयम धर्म ना कमाया सेवा साद ना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करमा सरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दय रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम कावो आप हाथ दय मोहे बचावो। सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबे करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिए सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊ जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरे है मरण काल का त्रास निवरे है। हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा। राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पूरी चतुर्दास कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बाद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशाने घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर खो करा करतारा प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है आप आपनी बूझ उचार है। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्बकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत महामूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती।

अंडज जेरज सेतज कीनी, उत भुज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दोष्ट दुखत हवै मरे।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां शब्दोता गावहो हरि केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरा घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा है सचा नाम मेरा आधारू सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहाओ जिस दिया ए वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वासो कीते काल कंटुक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कहे नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वेसूरे दुख

जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां, थाल विच तिन वस्तु पईओ, सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो, एह वासत तजी नह जाई नित नित राख उरतारो। तम संसार चरण लग तरीय सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवां।

पावड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे, ओथै तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड़ जाहे। पौ जल बिखम असगाहो गुर शब्दी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब

आपण जेव्हा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सत गुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सत गुर से तीरते दरगह।

सत्संग जी बोलो जी। वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाहती पाशी दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक रही त्याय फिर करते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याग सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर है कारण निधि आवे सब ताई हुए सहाय दसवें पाचिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पाचिया पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पारदार अंतर के घर सत बोलो जी। वाहे गुरु गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहब जादे चाली मुक्त हटिया जपिया तपिया जिन्हें नाम जपिया वन चकिया दे चलाई ते वाह देख नेड़ कीता तना प्यार हथे त्यार नहीं कमाई दते अंतर के बोलो जी। वाहे गुरु जिन्हा सिंह सिंघनिया धर्म ही सीख दिते बंद बंद कटवाए खोपड़िया लगाईया चैकियां चढ़े आने न चलाए गए गुरुद्वार सेवा कुर्बानियां की धर्म ने आ रहा से किसी देखे सत्संग निभाए तेना नहीं कमाई जाते अंदर के बोलो जी। वाहे गुरु पुरुद्वार अंदर के बोलो जी। वाहे गुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु नाम चेता आवे चित आवण का सर का सर सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब तुम रचायत देखते की फतेह बृद की पै पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी। वाहे गुरु सिखा नु सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकिया चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहे गुरु सिखा दा मन नीवा मत जी मत पद के राखे आप वाहे गुरु गुरु की बनवाई पंथ सदा सहाय देता जियो गुरुद्वारा ननकाना साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों आप जे पंथ नोड़े अगले गुफले दर्शन दीदार अज सेवा संभाल दता अपने खालसा जी नख्शो हे न्योटिया की ओट गुरु ने आसरिया दे आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार जियो दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे तो आने रास हे गरीब नवाज जी आपके चरण कामना अरदास ने राजा बख्शी की है आपके चरणा पितर गुरबाणी सुखमी साहब संपूर्ण पाठ दता आज वे संध्या समय जान के आपके चरणा सोधर रास आप पाठ की कृपा करो होइया भुला चुका नहीं माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सत क्षण प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत हिरदे सारी कृपाता करो जी अगो तो शुद्ध पितर बाणी चाणी बल बुद्धि बख्शिश करो आज इस खुशी में आप दिया मक्खियां दाता पितर कड़ाप शादी देगा तैयार करके हाथ ने दसार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सार संगत की असना लायक हो जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार दुखा कलेशा रोगां का नाश करो सुखां का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी कृपा करो जी बनवा दतार जी मेहर करो आप दिया बख्शियां दत्ता जो नंगा देगा जी और तुर सवार प्रवान करनी गिमराज कृपा करो अमृत तुला के दरते आई साफ संगत हाजिर दर प्रवान करो घड़िया लिख लाओ संगत का दरते तिर फुल पेटा बनाओ शुभकामना पूर्ण करो जी गुरु गिरिवाज कृपा करो तुतार आप चरना सेवा कर रहे सारे टारी सिंह सिंगनिया तंदुरुस्ती बख्शो चाहिए।

प्रसाद जयकार कीर्ति आखी है करते का हो बिजारो तेतकार गाव हो सोहेला सवेर सृजन हारो तुम गाव हो मेरे नरपाव का सोहेला हाँ वारी जित सोहेला सदा सुख हो रहाओ नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवन हार तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कमन संभार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सजन असी सड़िया जो होवे साहिब सिउ मेल कर करे पहुंचा सदने नित पवन सदन हारा सिमरी है नानक से देह आवन राग आसा महला पहला शेय कर शेय गुर शेय उपदेश गुर गुर एको वेस अनेक बाबा जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोय रहाओ विश्वे चसिया घड़िया पहरा थिति वारी माहो हुआ सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन मै थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल्यान लो पवन चवरो करे सगल बंदराय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पव खनना तेरी आरती अनाथा सबदवा जंत पेरी रहाओ सहस तव नैन नैन है तोहे कहो सहस मूर्त नना एक तोहे सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही सब मह जोत जोत है सोए तिसद चानन सब मह चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सुवारती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो आनंद नु मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारिंग का होए जाते तेरा नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडावत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साध न जाने अंतने अंतर हाँ मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चलह चुभ दुख पाव है जमकाल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समान है दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर भव सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख पुट वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला औद कटै दिन सो रहनारे मन गुर मिल काज सवारे रहाओ एह संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे एह रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सोई बिहाजो हर गुरते मने वसेरा निज कर महल पा

सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेस सत ते जन जाके हृदय प्रवेश सत निरत बूझे जे कोई नाम जपत ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मेत गत जिसकी श्रेष्ठ सो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मेत न जाने किया नानक ज्योत सुभावे सो वरतिया बिसमन बिसम पहे बिसमाद जिन बूझिया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग राच जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाकै संग तरै संसार जन का सेवक सोवण भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै सलोक आद सच जुगाद सचो है पी सचो नानक होसी पे सचो अष्टपदी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत ध्यावन हार आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ बखता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करण करावण तिन मूर पछाने जाकर हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरभउ होए बसाना जिस ते उपजया तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको भिन्न न कहना जाई बूजे बूजन हार बबेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जन संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धार नानक सो सेवक सास सास सुमार है अपने जन का पर्दा ढक है अपने सेवक की सर पर रख है अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पात्र रख है ताकि गत मित कोई ना लख है प्रभ के सेवक कौ को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊंच ते ऊंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया निकी की रीमै कल रख है भासम कर लस्कर कोट लख है जिसका शासन काटत आप ता कौ राखत देख रहात मानस जतन करत बहु भांत तिसके करत बिरसे जात मारे न रख अवर न कोई सर्व जिया का रख सोए काहे सोच करहे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंग बार बार प्रभ जपी है पी अमृत एहो मन तन त्रपी है नाम रतन जन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्टाया नाम धन नमो रूप रंग नमो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जान त्रिपताने मन तन नामे नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सद काम बोलो जस जि बा दिन रात प्रभ अपने जन की नी दात करै भगत आत्म कह जाए प्रभ अपने स्यों रहे सुमाए जो हुआ हो वसो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कहे एक न जानो आठ पहर प्रभ से हजूरे कहो नानक सेई जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले मन तन अपना तिन जान दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व थोक का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसके दर सब पाप मिटावे अवर से अनप सगली शाड तिस जन की तू सेवा लाग आवन जाना होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो साध पैरा सलोक सात पुरख जिन जानिया सात गुर तिसका नाऊ तिसके संग सिख उदर है नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक कौ गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन कटै गुर का सिख बेकार ते हटै सतगुर सिख कौ नाम धन दे गुर का सिख वडभागी हे सतगुर सिख का हलत पलत सवारै नानक सतगुर सिख कौ जी नाल सम्हारै गुर कै ग्रह सेवक

रहे गुरु की आज्ञा मन में सहे आपस को कर कश न जनावै हर हर नाम हृदय सद ध्यावै मन बेचै सतगुरु कै पास ते सेवक के कार्य रासु सेवा करता हो नेकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुरु की मत ले बीस बिस्वे गुरु का मन मान है सो सेवक परमेश्वर की गत जान है सो सत गुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुरु को बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जान जन्म है पार ब्रह्म एक आप नहीं काश पारम सह सियाण पलया न जाई है नानक ऐसा गुरबट भागी पाई है सफल दर्शन पेकत पुनीत पारसत चरण गत निर्मल रीत पेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुन कर बचन करण आगाने मन संतोख आत्म पति याने पूरा गुर अखियो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावै तिस लय मिलाए जिहबा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूर्ण बबेक काहू बोल न पौचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निरबानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन नित करै चरण कमल हृदय सिमरै सद बलहारी सत गुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावै जन कोए अमृत पीवै अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण तास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे मोह माया कै संग न लेप मन में रख हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम मोह दुख तह ते नासे तप तमाहे ठांड वरताई आनंद भया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पौ चूका निरपौ होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका सातिन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी थैत पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्व निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पै प्रगास साध कै संग रचे रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चल बिन भजन बिख्या सगली शार हर हर नाम कमावना नानक एहो धन सार अष्टपदी संत जना मिल करहु विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत विसार हो चरण कमल रिद में उरतार हो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहु नाम हर वाथ एहु धन संच हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखु मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस धन को चार कुंट उठ धावै सो धन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित बाछै मीत सो सुख साधु संग परीत जिस सुबा को करह भली करनी सा सुबा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटै हर अवखद लाए सर्व निधान मै हरि नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन प्रभु दो हर कै नाए दैत सताव दे आवै ठाए ता कौ बिघन न लागै कोई जाकै हृदय बसै हर सोए कल ताती ठंडा हर नाउ सिमर सिमर सदा सुख पाउ भौ बिनसै पूर्ण होए आस भगत भाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसै अभिनासी कहो नानक गाटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवा गवन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव एवं रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार आनक उपाव न छूटन हारे सिमरत सास वेद विचारे हर की भगत करहु मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चालस तेरा तना तू क्या लपटावै मूर्ख मना सुत मीत कुटंब अर बनता इन ते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया बिस्थार इन ते कहो कवन छुटकार
अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना ना बिसार नानक पछताना गुर की मत तू ले आने भगत बिना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखू मन माहे जन्म जन्म के केल बिख जाहे आप जपहु अवरा नाम जपावहो सुनत कहत रहत गत पावहो सार भूत सत हर को नाओ सह सुभाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतरस मैल बिन सजाए होमे बिख फैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम सुमाल शाड़ सियाण पसगली मना साध संग पावे सच धना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दरग जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सलाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर रहे प्रव्याप अनक विस्थार एक ते भय एक आराध परास्त गए मन तन अंतर एक प्रभ राता गुरु प्रसाद नानक एक जाता सलोक फेरत फेरत प्रभ आया परया तो सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपने भगती लाए अष्टपति जाचक जन जाचै प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम सत जना की मंगो धूर पार ब्रह्म मेरे सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल सिव लागै प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मंगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जान त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपर परे प्रेम रास रंग उपजे चाओ साध कै संग परे सरण आन सब त्याग अंतर प्रगास आन दिन दिवलाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुरु ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुकत जन भया जन मरण दुख भ्रम गया इश पुनी शरदा सब पूरी रव रहया सद संग हजूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों विसरै जे काल न पाने सो क्यों विसरै जे किया जन सो क्यों विसरै जिन सब किश दिया सो क्यों विसरै जे जीवन जिया सो क्यों विसरै जे अगन मैं राखै गुरु प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों विसरै जे बिख ते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुर पूरै तत इह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहो काम आन त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरा नाम जपावो भगत पाए तरिय संसार बिन भगती तन होसी शार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपो गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एही सुआओ नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन बिगसै साध चरण धोए भगत जना के मंत्र रंग भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दी जय कर माया गुरु प्रसाद नाम जप लाया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्ब समाए प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल सर्व कटां करत प्रतपाल आदि पुरुख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावै मन हीत हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुकत मोख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत
साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रकाश सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन सुमति आप आपन किया नानका पे फिर जाप। अष्टपदी जब अकार एकाशना दृष्टिता पाप पुन तब कह ते होता जब तारी आपन सुन समाधो तब बैर विरोध किस संग कुमातो जब इसका वर्ण चिहन न जापतो तब हरक सोग कह किसे व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम आपन खेल आप वरती जा नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कहो किस कहो गनी। जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुरक कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुबाए तब सेव सकत कहो कित ठाए। जब आप ही आप अपनी जोत तर तब कवन निडर कवन कस डर है आपन चले तो आप करने हार। नानक ठाकुर अगम अपार अबिनासी सुख आपन आसन तह जन मरण कहो कहा बिनासन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगित अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त कैसे पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा। जह निर्मल पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्बान तह कौन कौ मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसै भूख कवन त्रिपतावै करण करावन करने हार। नानक करते का नाहीं सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई। जय सर्व कला पे प्रवीण तह वेद कतेव कहा को चीन। जब अपन आप उतार तो सगन अप सगन कहा विचार है। दुहा श्रेय का आप स्वामी खिल बिगसय अंतर जामी खिल बिगसय अंतर जामी। तै वेद तै तब से आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला पे प्रवीण तह वेद कतेव कहा को चीन। जब आपन आप उतार है तो सगन अप सगन कहा विचार है। जह आपन ऊच आपन आप नेरा तै कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिसमन बिसम रहे बिसमादो नानक अपनी गत जानो आप। जह निर्मल पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्बान तह कौन कौ मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसै भूख कवन त्रिपतावै करण करावन करने हार। नानक करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जह सर्व कला पे प्रवीण तह वेद कतेव कहा को चीन। जब आपन आप उतार है तो सगन अप सगन कहा विचार है। जह आपन ऊच आपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बेसमन बेसम रहे बेसमाद नानक अपनी गत जान हो आप। जह अशाल अशेद अपेद समाया उहा किसे व्यापत माया। आपस को आपे आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश। जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लगे चिंता। जह अपन आप पतियारा तै कौन कथै कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपे पहुचा। जह आप रचो प्रपंच आकार तेहो गुण मैं कीनो विस्तार। पाप पुन तै पई कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत। आल जाल माया जंजाल होमै मोह परम पै पार। दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान। आपन खेल आप कर देखै खेल संकोचै तौ नानक एकै। जह अवगत भगत
तह आप जह पसरे पसार संत परताप दुहु पाख का आपे तनी उनकी शोभा उनहु बनी आपे कौतुक करे आनंद जोज आपे रास भोगन निर्जोग जिस भावै तिस आपन नाए लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै बेशुमार अथा अगंत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै श्लोक जी।

दूजा कह दृष्टारु अष्टपदी आप कथय आप सुनने हारु आपे एक आप विस्तारु जात सुपावे तन श्रेष्ठ उपाय अपने पाने नहीं समाये तुम ते पिन नहीं किश होए आपन सूत सब जागत परोए जा कहो प्रभ जियो आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् कविता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सब तक हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राख है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस ताज अवर कहां को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जन हुसाथ गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलहार पूर्ण पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जमी रहे व्याप प्रत पाले जीअन बहु पांत जो जो रचियो सो तिस एतियात जिस भावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करन हार नानक एक जानिया जन लागा हर एक नाए तिसकी आसन बिरथी जाए सेवक को सेवा बनाई हुकम बूझ परम पद पाई इस ते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पै निरवैर आन दिन पूजे गुरु की पैर ए लोक सुखी ए पर लोक सुहेले नानक हार प्रभ आपे मेले साध संग मिल करहु आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तत करो विचार दुर्लभ दे का करो उधार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुआओ आठ पहर प्रभ पेखो नेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हलत पलत दोए लेहो सवार राम नाम अंतर उरतार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साच परिखिया मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पाओ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभा केव तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवै जाहे तिस्ते दूर कहा को जाए उबरै राखन हार ते आए निरपाव जपै सगल पाव मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन कौ कोई न पहुचन हार सर ऊपर ठाडा गुर सूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उधरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सुहुत निहाल ताके निकट न आवत काल अमर पै अमरा पद पाया साध संग नानक हर तिहाया श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर बिनासु हर कृपा ते संत पेटिया नानक मन पर गासु अष्टपदी संत संग अंतर प्रवडीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिगरी एक सुकट माहे अनक रंग नाना दृष्टाहे नवनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत तह नाद कहन ना जाई अचरज बिस्माद तिन देखिया जिसे आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट ब्याप रहया भगवंत तरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बान तेन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंट दह दिसे समाहे तिस ते पिन नहीं कोठाओ गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत मैं देख ससियर सूर नखियत्र मैं एक बाणी प्रभ की सबको बोलै आप अडोल न कबहू डोलै सर्व कला कर खेलै खेल मोल न पाइय गुण अमोल सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत तार रहे हो स्वामी ओत बोत
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਕਾ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸਾਸ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੈ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ, ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀਏ ਰਹਿਤ, ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ, ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ, ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਬਾਹਰ ਪੀਓ ਹੀ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ। ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ, ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਬਿਸਥਾਰ, ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ, ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ, ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ, ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸੇ ਆਪ ਜਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ, ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ, ਸਰਬ ਨੈਨ ਆਪ ਪੇਖਣ ਹਾਰਾ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ, ਆਪਨ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਨਾ, ਆਵਨ ਜਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ, ਸਭ ਕੈ ਮੱਧ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੈ, ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਸਮਾਏ, ਇਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ, ਊਰੈ ਕਹੋ ਕਿਨੈ ਕਛੁ ਕਰਾ, ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਅਤ ਨੀਕੀ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ, ਆਪ ਸਾਚ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ, ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਨ ਸੰਗਰਾਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਤਮਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ, ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪਰਵਾਨ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਨ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ, ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ।

राष्ट्रपति पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरह गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरह हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भाज परमानंद नरक निवार उधार हो जियो गुण गोबिंद अमृत रास पियो चित चित वहाओ नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महात कह माथे नानक उदरे तिन कह साथे सरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न पए गुरुदेव पूरन होई सेवक की सेव आल जंजाल बिकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सोहोत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बाहुर न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम शांत रिद नाव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मध सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख पहने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निधान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन बिसराम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाकै मस्तक करम प्रभ पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुने लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उधारै निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै

अंत नंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथ नाथ विनोद कोड़ आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथ घाड़त घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया न जाहे जी को कह पिछे पछताए तिथ घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुर सिद्धा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोद महाबल सूर तिन महराम रहया भरपूर तिथे सीतो सीता महमा माहिता के रूप न कथने जाहे ना उहे मरहे न ठागे जाहे जिनके राम वसै मन माहे तिथे भगत वसह के लो करह आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेख नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जी को कथे तंत नंत तिथे लो लो आकार जिव जी हुकम तिवै तिवकार विखे विकसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीर सुनियार अहरण मत वेद हथियार भौख लागन तपताओ भांडा भाव अमृत तटाल घड़िया शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत।

मुखे उजले केती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं, छपै छंत्व प्रसाद। चक्र चिहन अर बर्ण जात, अर पात नहन जे रूप रंग, अर रेख भेख को कह न सकत के। अचल मूरत अनुभव प्रकाश, मितोज कही जय। कोट इंद्र इंद्रान साहि साहन गनी जय। त्रिभवन महीप सुर नर असुर, नेत नेत बन त्रिन कहत। त्वय सर्वनाम कथे कवन, कर्म नाम वर्णत सुमत। भुजंग प्रया छंद नमस्तंग काले, नमस्तंग कृपाले, नमस्तंग रूपे, नमस्तंग नूपे, नमस्तंग पेखे, नमस्तंग लेखे, नमस्तंग काये, नमस्तंग जाये, नमस्तंग गंजे, नमस्तंग पंजे, नमस्तंग नामे, नमस्तंग ठामे, नमस्तंग कर्मंग, नमस्तंग तर्मंग, नमस्तंग नामंग, नमस्तंग तामंग, नमस्तंग जीते, नमस्तंग पीते, नमस्तंग वाहे, नमस्तंग टाहे, नमस्तंग नीले, नमस्तंग नादे, नमस्तंग छेदे, नमस्तंग गादे, नमस्तंग गंजे, नमस्तंग पंजे, नमस्तंग उदारे, नमस्तंग पारे, नमस्तंग सुएक, नमस्तंग निक, नमस्तंग अभूते, नमस्तंग अजूपे, नमस्तंग निरकर्मे, नमस्तंग निरपरमे, नमस्तंग निर्देशे, नमस्तंग निरपेशे, नमस्तंग निरनामे, नमस्तंग निरकामे, नमस्तंग निरधाते, नमस्तंग निरगाते, नमस्तंग निर्दूते, नमस्तंग भूते, नमस्तंग लोके, नमस्तंग शोके, नमस्तंग निर्तापे, नमस्तंग तापे, नमस्तंग त्रिमाने, नमस्तंग निदाने, नमस्तंग गाहे, नमस्तंग बाहे, नमस्तंग त्रिवर्गे, नमस्तंग सर्गे, नमस्तंग प्रभोगे, नमस्तंग सुजोगे, नमस्तंग रंगे, नमस्तंग पंगे, नमस्तंग गम्मे, नमस्तस्तरम्मे, नमस्तंग जलाश्रे, नमस्तंग निराश्रे, नमस्तंग जाते, नमस्तंग पाते, नमस्तंग अमजबे, नमस्तस्तजब्बे, अदेशंग देशे, नमस्तंग पेशे, नमस्तंग निर्तामे, नमस्तंग निर्वामे, नमो सर्वकाले, नमो सर्वदयाले, नमो सर्वरूपे, नमो सर्वभूपे, नमो सर्वखापे, नमो सर्वतापे, नमो सर्वकाले, नमो सर्वपाले, नमस्तस्तदेव, नमस्तंग अपेव, नमस्तंग जन्मे, नमस्तंग सुबनमे, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपौणे, नमो सर्वरंगे, नमो सर्वपंगे, नमो कालकाले, नमस्तस्दयाले, नमस्तंग वरणे, नमस्तंग मरणे, नमस्तंग जरारंग, नमस्तंग कृतारंग, नमो सर्वतन्दे, नमो सत्वंदे, नमस्तंग निरसाके, नमस्तंग निर्वाके, नमस्तंग रहीमे, नमस्तंग करीमे, नमस्तंग अनन्ते, नमस्तंग महन्ते, नमस्तस्तरागे, नमस्तंग सुहागे, नमो सर्वशोखंग, नमो सर्वपोखंग, नमो सर्वकर्ता, नमो सर्वहर्ता, नमो जोग जोगे, नमो भोग भोगे, नमो सर्वदयाले, नमो सर्वपाले, चाचरी चंत्व प्रसाद। अरूप है, अनूप है, अजू है, अपू है, अलेख है, अपेक है, अनाम है, अकाम है, अदेह है, अपे है, अजीत है, अपीत है, त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचांज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्भूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अला है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम्ब है, अजम्ब है, अपूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रया छंद नमो सर्वमाने, समस्ति निदाने, नमो देव देवे, अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे, नरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृते, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामी, समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाते, समस्ती विभूते, कलंकंग विनाने, कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजे स्वंग परम रूपे, नमो जोग जोगे स्वंग परम सिद्धे,
नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अवक्तेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो अप्रे नमो प्रेत अप्रे देवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साह नमो पूप पूपे नमो दान दाने

ہے کہ کارن کنندہ ہے کہ روزی دہند ہے کہ رازق رحیم ہے کہ کرمن کریم ہے کہ سربنگ کلی ہے کہ سربنگ دلی ہے کہ سربتر مانے ہے کہ سربتر دانے ہے کہ سربتر گون ہے کہ سربتر پون ہے کہ سربتر دیس ہے کہ سربتر پیس ہے کہ سربتر راج ہے کہ سربتر ساج ہے کہ سربتر دین ہے کہ سربتر لین ہے کہ سربتر جاہو کہ سربتر پاہو کہ سربتر دیس ہے کہ سربتر پیس ہے کہ سربتر کال ہے کہ سربتر پال ہے کہ سربتر ہنتا کہ سربتر گنتا کہ سربتر پیکی کہ سربتر پیکی کہ سربتر کاج ہے کہ سربتر راج ہے کہ سربتر سکھ ہے کہ سربتر بھوک ہے کہ سربتر تران ہے کہ سربتر پران ہے کہ سربتر دیس ہے کہ سربتر پیس ہے کہ سربتر مانے ہے سدیو انگ پردان ہے کہ سربتر جاپیا کہ سربتر تھاپیا کہ سربتر پان ہے کہ سربتر مانے کہ سربتر اندر ہے کہ سربتر چندر ہے کہ سربنگ کلیم ہے کہ پرمنگ فہیم ہے کہ عقل علام ہے کہ صاحب کلام ہے کہ حسن الوضو ہیں تمام الرضو ہیں ہمیشہ سلام ہے سلیخت مدام ہے غنیم الشکست ہے غریب الپرست ہے بلند المکان ہے زمین الزمان ہے تمیز التمام ہے رضو الندان ہے حریف العظیم ہے رجائق یقین ہے انیکل ترنگ ہیں اپید ہیں اپنگ ہیں عزیز النواز ہے غنیم الخراج ہیں نرکت سروپ ہیں ترمکت وپوت ہیں پربکت پربا ہیں سجکت سدا ہیں سدیونگ سروپ ہیں اپیدی انوپ ہیں سمستو پراج ہیں سدا سربساج ہیں سمست السلام ہیں سدیو الاکام ہیں نرباد سروپ ہیں اگاد ہیں انوپ ہے اونگاد روپ ہے اناد سروپ ہے اننگی انام ترپنگی ترکامی تربرگنگ تربادے اگنجی اگادے سبنگ سرپاگی سسربا انوراگے त्रिपुगत स्वरूप है छिज है छूत है कि नरकंग प्रनाश है प्रथुल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपांग है अनांग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अवय है अपूत हैं अतूत हैं अनाश हैं उदास हैं अतंद हैं अबंध हैं अभगत हैं विरक्त हैं अनाश हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनित हैं अलिख हैं अदिख हैं अलेख हैं अपेख हैं अटा हैं अगाह हैं असंभ हैं अगम हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट छंत्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंत्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्मं परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनाम्य त्रिपंगी त्रिकाम्य निर्पंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात न साकं शरीक अमितो अमीक सदैव प्रभा अजय अजा भगवती चंत्व प्रसाद कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चिराग है कि कामल करीम है कि राजक रहीम है कि रोजी दिहंद है कि राजक रहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकान है हिरासुल फिकान है किलंकंग प्रनाश है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकंग प्रनाश है बैस्तुल निवास है कि सरबल गवान है हमेशुल रवान है तमाम उल्तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है अदेशल अलेख है हमेशल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है कि जरूरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि मितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि मितो विभूत है कि मितो प्रसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि मितो अभंग है मत पार छंत्व प्रसाद मुनमन प्रणाम गुनगन मुदाम अरवर अगंज हर नर परपांज अनगन प्रणाम मुनमन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुपव अनास मुनमन प्रकाश गुनगन प्रणाम जलथल मुदाम अंचिज अंग आसन अपंग उपमा पार गतमित उदार जलथल अमंड दिश्विश अपंड जलथल महंत दिश्विश बेअंत अनुभव अनास त्रितर तुरास आजान बाहु एक सुदाहु ओ अंकार आद कथनी अनाद खलखंड खयाल गुरुवर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम
अनुछिजगात अजिजना बात अनछंजगात अनरंज बात अनटुट भंडार अनडट अपार आडीठ धर्म अतटीठ कर्म अनबरन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंतवा प्रसाद करुणालय है अरकालय है कलखंडन है महमंडन है जगतीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के धरने जग के करने मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंकर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वंपर है सर्वेश्वर है जगतीश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है थपा थप है कृता कृत है अमृता अमृत है अमृता अमृत है करुणा कृत है कृता कृत है धरणी त्रित है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है निर्णायक है खलकायक है विश्वंपर है कुरुणालय है निरपनायक है सर्पायक है पवभंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है कुलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस की जस है भुजंग प्रिया छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकार नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कला कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रिय नादंग विपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वासासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी छंद अजय अलय अपय अवय अपू अजू नासका सगंज पंज लख पक अकाल दयाल अलेख अभेख नाम काम गाह अटा नाते प्रमाते अजो नियमो नि नराग नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग परमंग अगंजे लेखे भुजंग प्रया छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल नामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रंग परनासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय विपूते गजायब गनीमे हरियं करियं करिमुल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सोयं पव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं विपूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विपूते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वै प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख फिर कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधा दिख संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के मातिम तंग जरे जर संग अनूपू तंग सुरंग सुवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कुजात निवारे भारी भुजान के भूप भली बिदन्यावत शीस न जात बिचारे इते पए तो कहा पै भूपत अंत को ना गए पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजित गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवेक भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दमदान सुसंजमनी अनेक विशेख है भेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब सुबिचार हजार के देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसा सुना दुर्जान दलेंगे पारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर रीन मरोर मुवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरे आर विचार है सार की तार पछैया
तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गडान के तोड़ नहार सो बात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक नेक सुवेक दिवैया दानव देव फनिंद निशाचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं तल मैं पल ही पल मैं सब ताप तपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जय तुन पापन के बुंज कपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजिंद्र निराधव चौं त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजा दिक दान अनेक सुअंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्ण सचिवत अंत वसे जम्फास बरेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है पगते नर फिर न देह तरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे भग ध्यान लगायो नाथ फिरयो ली सा समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो वास कियो बख्यान सुबैठ कै सही ऐसे सुबैस बितायो साच कहूं सुन लेहु सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा मह काहू पछा को शीस निवायो को बतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बतान को पूज

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबे उबाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबो आप हाथ दै मुहे बचावो। सुखी बसै मोर परिवारा सेवक सिख सबै करतारा। हो रक्षा निज कर दै करिए सब बैरन को आसंगरिय पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं। जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिय मरण काल का त्रास निवरिय। हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करे हो रक्षा। राख लिहो मुहे रखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तुमासा। जवन काल जोगी शिव की यो वेद राज ब्रह्मा जूती यो। जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दै जचन पजायो। आदंति कै अवतारा सुई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसे को हमारी सकल प्रजा जिनी आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमु बद कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरे अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने। जब उदकर्क करा करतारा प्रजा तरत तब दे अपारा। जब आकर्क करत हो कबू तुम मैं मिलत दे तर सबू। जेते बदन सृष्ट सब तार आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम। निरंका निर्भका निर्लंब वाद अनिल अनाद असंभ। ताका मूडो चारत भेदा जा को भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत महा मूड कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भेव। आप अपनी बुद है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा के विद सजा प्रथम संसारा। एक कै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही पूपा। अंडज जे रसे तज कीनी उत पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पय शंकर कैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं पव। आप रक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रनकाता। जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट तुख्त हवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है। रक्षा हुए ताय सब काला दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला। कृपा दर्शन जाहे निहरि हो ताके ताव तनक में हरि हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छाछव सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें सुम्भारा काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारु कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे लिहो उबारी। सर्व ठौर मोहो सहाय दुष्ट दुख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किल विक्षकल देह को हरता दुष्ट दुख इनको क्षय करता। श्री अस्त्र जप भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई। अड़ेल सुने गुंग जो याई सुरस न पावई। सुने मूड चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाव निकड़ना तिन नर के रह हो। जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पनी जय अर्थ सहस पुन तीन कही जय। आद्र सुधी अष्टमी रवारा तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा। सुवैया पाई गए जब ते तुमरे तब ते कुआंक तरे नहीं आने हो।
राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मतेक न मान्यु सिमृत शास्त्र भेद सब बहु भेद कह अमेक न जान्यो श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखान्यो दो हरा सगल द्वार को छाड़ कह गयो तुहारो द्वार वाहे।

देह दर्श मन चाव, भगत इहु मन ठहरावै, बलिउ चिराग अंध्यार मह, सब कल उदरी इक नाम धर्म, प्रगट सगल हर भवन मह, जन नानक गुर पार ब्रह्म। प्रगट सगल हर भवन मह, जन नानक गुर पार ब्रह्म। सतनाम वाहे गुरु साहिब जीओ, तनासरी महला पंजवा, दीन दर्द निवार ठाकुर।

0: सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनीरण जन्म चाओ सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार। ओलू चरखा चक्की चक थल वालो ले बहुत अनंत लाटू माधाणिया अनगा पंखी पौंदिया लैना सा सूए चढ़ पुआई जंत नानक पौंदिया गणत नान।
1: मंदन मंत पवाए सोए पै कृष्ण च नचे सब कोई नच नच हसे चले सिर होई उड़ न जाए सदना होए नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ।

मुसलमान की पेड़े पे कुम्हार घट पांडे टांकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोज बप्पे चट लपया नानक जिन करता कारण किया सो जाने करता और पौड़ी बिन सतगुरु कने न पा।

मंजोर छली चंद्रावल कान कर संजाद भया पार जात गोपी ल आया बिंद्रावन में रंग किया। कल में वेद तर्पण हुआ नाम खुदाई अलह भया नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया।

चले पाए। चौकन बुलाया बह चौके पाया, सिखा कन चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थिया, ओह मुआ ओह चढ़ पाया बेतगा गया महला पहला।

मच्छे टिकाओ तेर धोती खाई हथ फिर जगत का साई नील बस्त्र पैर हुए प्रवान मलेश ताले पूजे प्राण भाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर कसे ना।

रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाए परवा नाए किसे केरी भाज सचे नाए दरबाटी ऊपर खर्च मंगा

वेद सिमरत कथै शास्त्र भगत करहै विचार मुक्त पाइय साध संगत बिनस जाए अंधार।

रहाउ। साध संग कछ पौ न पराती, गुण गोपाल गाइयह दिन राती। कर कृपा प्रभ बंधन छोट, चरण कमल की दीनी ओट। कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस पीवै जान नीत। गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जाका मन लागा। दुख दर्द भ्रम ताका भागा, हर धन को वापारी पूरा। जिस है निवाजे सो जान सूरा, रहाउ। जाको पय कृपाल गुसाई, से जान लागे गुर की पाई।

प्रभ आपदा काटी। गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेस। चरण कमल मन मह परवेश। उच रहो राम नाम लाख बारी। अमृत रस पीवहो प्रभ प्यारी। रहाओ

रहाउ। प्रभु ते आगो लागत अन लोबा, दास सलाम करत कत सोबा। अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए तिसह न जानह सुआन। कहो नानक हम लूण हरामी, बख्श ले हो प्रभु अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवां,

भाव सर्व कल्याण सुख सहज निदान जाकै हृदय वसै भगवान औखद मंत्र तंत सब शार करने हार हृदय महतार ताज सब परम भजियो पार ब्रह्म कहो नानक अटल एहो धर्म गौड़ी महला पंजवां कर किरपा भेटे गुर सोई तित बल रोग ना व्यापै कोई राम रमण तरण पै सागर सरण सूर फारे जम कागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण भय काम जप तप संजम पूरी वड्याई गुर किरपाल हर भय सहाय मान मोह खोए गुर परम पेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवां बिखै राज ते अंदुला पारी दुख लागै राम नाम चेतारी तेरे दास कौ तू ही वड्याई माया मगन नरक लै जाई रहाओ रोग गिरास्त चितारे नाओ बिख माते का ठौर ना ठाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत आन सुखा नहीं आवह चीत सदा सदा सिमरौ प्रभ स्वामी मिल नानक हर अंतर जामी गौड़ी महला पंजवां

महा तपत सागर संसार प्रभ खिन मह पार उतारण हार अनेक बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुकत फल पाहे उकत सियानप इस ते काश नाहे कर कृपा नानक गुण गाहे गौड़ी महला पंजवां थाती पाई हर को नाम बिचर संसार पूरण सब काम वड भागी हर कीर्तन गाइय पार ब्रह्म तू देह ता पाइय रहाओ।

मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुटे ओ बिक संसार कर कृपा प्रभ कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पाउ सरनाई जिन हर जाते मन तन सीतल चरण हर राते पै भंजन प्रभ मन न बसाही डरपत डरपत जन्म बहुत जाही रहाओ जाकै हृदय बसयो हर नाम सगल मनोरथ ताके पूरन काम जन्म जरा मिरत जिस वास सो समरथ सिमर सास गिरास मीत साजन सखा प्रभ एक नाम स्वामी का नानक टेक गौड़ी महला पंजवां।

मन लाग गौड़ी महला पांजवा हर के दास स्यों साकत नहीं संग ओ बिखई ओस राम को रंग रहाओ मन असवार जैसे

सिंह पाछै पावै गाडर ले काम तेन कर पूंजी गाडर ले काम तेन कर पूंजी सौदे को तावै बिन पूंजी।

पुकार। प्रेम भगत राते गोपाल, नानक जाचै सादरवाल। गौड़ी महला पंजवां, ऐसी प्रीत गोविंद सिंह लागी। मेल लए पूरन बडभागी, रहाओ भरता पेख बिगसै ज्यों नारी। त्यों हर जन जीवै नाम चितारी, पूत पेख ज्यों जीवत माता। ओत पोत जन हर स्यों राता, लोभी आनंद करै पेख तना। जन चरण कमल स्यों लागो मना, बिसर नहीं एक तिल दातार। नानक के प्रभ प्राण आधार, गौड़ी महला पंजवां। राम

रहाओ तिन ऊपर जाइए कुर्बान, नानक जिन जपया निर्बाण, गौड़ी महला पंजवां, तू है।

रहाउ। आगै आप इहु थान वस जाकै, आठ पहर मन हर कौ जापै। पत परवान सच निसान, जाको आप करहै फुरमान।

रहाओ। कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्थिर सोहाग। गौड़ी महला पांजवा, धोती खोल विछाए हेठ, गर थपल वांगू लाहे पेट। बिन कर तूती मुक्त न पाईए, मुक्त पदार्थ नाम ते आईए। रहाओ पूजा तिलक करत इस नाना, छुरी काड लेवै हाथ दाना। वेद पढ़ै मुख मीठी बाणी, जिया कुहत ना संगै प्राणी। कहो नानक जिस किरपा धारै, हिरदा सुध ब्रह्म बिचारै। गौड़ी महला पंजवां, थिर घर बैसो हर जन प्यारे। सतगुरु तुमरे काज सवारे। रहाओ दुष्ट दू

रस पीने निरभउ होए भजउ भगवान साध संगत मिल कीनो दान शरण परे प्रभ अंतर जामी नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी गौड़ी महला पंजवा हर संग राते पाहे न जलै हर संग राते माया नहीं छलै हर संग राते नहीं डूबै जला हर संग राते सुफल फला सब भय मिट है तुम्हारे नाए भेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ हर संग राते मिटै सब चिंता हर स्यों सो रचै जिस साध का मंता हर संग राते जमकी नहीं त्रास हर संग राते पूरन आस हर संग राते दुख ना लागै हर संग राता अन दिन जागै हर संग राता सहज घर वसै हर संग राते भ्रम भौ नसै हर संग राते मत उत्तम होए हर संग राते निर्मल सोए कहो नानक तिन कौ बल जाई जिन को प्रभ मेरा बिसरत नाही गौड़ी महला पंजवा उद्दम करत शीतल मन पहे मार्ग चलत सगल दुख गए नाम जपत मन पहे आनंद रस गाए गुण परमानंद खेम पया कुशल घर आए भेटत साध संग गई बलाए रहाओ नेत्र पुनीत पेखत ही दरस तन मस्तक चरण कमल ही परस गोबिंद की टहल सफल एकाया संत प्रसाद परम पद पाया जन की कीने आप सहाय सुख पाया लगदा सह पाए आप गया ता आपे पए कृपा निदान की सरनी पए जो चाहत सोई जब पाया तब ढूंढन कहा को जाया अस्थिर पए बसे सुख आसन गुर प्रसाद नानक सुख बासन गौड़ी महला पंजवा कोट मजन कीनो इशनान लाख अरब खरब दीनो दान जा मन वस्यो हर को नाम सगल पवित गुण गाए गोपाल पाप मिट है साधु शरण दयाल रहाओ बहुत उर्द तप साधन साधे अनेक लाभ मनोरथ लादे हर हर नाम रसन आराधे

जन्म के केल बेखला थे, कहन ना जाए प्रभ की वड्याई, नानक दास सदा सरनाई। राग गौड़ी चेती महला पांजवां, दोपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राम को बल पूरन पाई, ताते बिरथा ना व्यापै काई। रहाओ जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई।

पंजवां पूज बालबीर ब्रह्म सुख सागर गरत पारत गह लिहो अंगुरिया रहाओ श्रवण न सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगुरिया।

राग गौड़ी बैरागण महला पांजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दयो गुसाई मी तुला तू संग हमारे बास जियो रहाओ।

हस्त अलंबन देहो प्रभ गर्तह उदर गोपाल मोहे निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल क्या सुख तेरे सम्मला कवन विधि विचार शरण समाई दास हित ऊचे अगम अपार सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे सुप

साध संग नानक भजै बिख तरिया संसार। गौड़ी बैरागण रहोए के शांत के घर महला पंजवां। इको ओंकार सतगुर प्रसाद है कोई राम प्यारो गावै सर्ब कल्याण सुख सच पावै रहाओ। बन बन खोजत फिरत बैरागी बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से वड भागी ब्रह्मादिक सनकादिक चाह जोगी जति सिद्ध हर आह। जिस है प्राप्त सो हर गुण गा है

रहाओ। भ्रम की कुई तृष्णा रस पंकज अत तीक्ष्ण मोह की फास। काटन हार जगत गुर गोबिंद चरण कमल ताके करहु निवास। कर कृपा गोबिंद।

सहज भया भ्रम खिन मह नाठा मिल ज्योति ज्योत समाई मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई।